सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुरु गुरहाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा की वड्याईया तुद बिन सिद्धी किरै न पाईया कर मिलै नाही ठाकुर हाईया आखण वाला क्या बेचारा सिपती भरे तेरे भंडारा

कालपाय ब्रह्मांब अवतरा कालपाय शिवजु अवतरा कालपाय कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप संवारी सेवकन

है। ओ जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस पण तीन कही जय।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद। जिस मह अमृत ज्ञान है

है सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगै।

0: सत मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: तुम निर्वाण दास हम दीना नानक साहिब पर

मतभेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा भाओ मृत तित टालो कड़िया शब्द सची टकसालो जिनको नदर करम तनकारो नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगत

मोह बचावो। सुखी बसाई मोरो परिवार आगन सेवक सिख सब करतारा मोर उच्चारण करदा करिया इन सब बैरन को आसन करिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवरण त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारी मारिया है। आप हादर मुझे अबरिया मरण काल का त्रासन बरिया है हो जो सदा हमारे पच्चा श्रिया तो जो करे हो रचा। राख ले हो मुहराखण हारे साहिब सन सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर दसकंता काल पाए ब्रह्मा अवतरंग काल पाए शिव जू अवतरंग काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल काकी आत्मासा। जमन काल जोगी सब की ओ बेदराज ब्रह्मा जूथियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार हता हमारा ओ जमन काल सब जगत बनायो देवदा दिच्छनु पजायो। आदि अंतिक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तिसिको हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को परम मत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचल या सूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाना कट कट के पढ़ पढ़ की जाना है जबद कर करा करतारा प्रजा धर तप देह पारा जब या कर तो

निरंकार निर्विकार निर्लंभ आदि अनीला नाद संभव ताका मूड़ो चारद भेदा जाको भेवन पावत बेदा ताको कर पान अनुमानत माह मूड़ कस भेदन जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बोध जिती बरणत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा के बिद सजा प्रथम संस

चौपाई को कह चौपाई संबत 17 सहसपण जय अर्ध सहसपण तीन कह जय भाद्रव सुधी अठमी रव बारह तेरह सतद्रव ग्रंथ सुधारा सोया

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नांग प्रेजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद शिव विस्माद।

पहकार जोगी सुनते हम जते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सत्य मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा कारा बाविकार

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़े

0: इसमें धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का कोटा अनकोट शुक्रा जिन्ह ने पार मेहर करके अमृत वेले पवित्र हजूरी अंदर शब्द कीर्तन ना जुड़ करके सत्संग दे लाए बख्शे गरीब नवाज सब दा पढ़िया सुनिया लिखी रहन गुरु चरणा ना बन आवे आव सरण करी लड़ीवार गुरसिख विचार ज्ञानी दर्शन सिंह होना पशु वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭਾ ਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜਾ ਦਿਨ ਸੁਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ

चढ़े सो त्रिपार गुर पार तारन कलगी सुहसी गुर कलगी तार जगदी सत श्री अकाल खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

फिरत फिरत प्रभाया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए सो कहो टल गुर सेवी है अहनिस सहज सुबाए दर्शन परस्या गुरु का